0: सोचिए महीने के आखिर में जेब खाली हो और अचानक से कहीं से कुछ पैसे मिल जाएं, तब जो खुशी होती है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐसी ही खुशी का, हर्षोल्लास का एहसास हुआ। बुधवार और गुरुवार पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे प्रबल दावेदारों को हारता देख मानो मायूसी का अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर रोशनी की ऐसी खिड़की खुली जिसकी कल्पना बैडमिंटन के प्रकांड पंडितों ने भी नहीं की थी। जी हाँ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में भारत का एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ये पदक वुमेन्स डबल्स में हासिल किया है, एक ऐसी कैटेगरी जहां इससे पहले पदक 2011 में यानी 15 साल पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने भारत को दिलाया था। ट्रीसा ने कहा,
1: Finally this happened and obviously really happy that we converted this win into this semi-finals and getting a medal, but it's not stopped.

0: there is matches are coming tomorrow also. Obviously, I want to thank the crowd people. I think the crowd was amazing today. That was really giving that positive vibes to us.
1: इस पदक की महक सूखे के बाद पड़ने वाली पहली बारिश जैसी इसलिए भी है क्योंकि ट्रीसा और गायत्री का ये साल मुश्किलों में कटा है। अप्रैल में ट्रेनिंग के दौरान ट्रीसा के टखने में लगी चोट के चलते ये जोड़ी ना ही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल पाई और ना ही प्रतिष्ठित ऊबर कप में हिस्सा ले पाई।
2: बिफोर एशियन चैंपियनशिप आई गॉट इंजर्ड 3 डेज बिफोर दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट्स बीन सैड एंड इमोशनल एंड काइंड ऑफ मिसिंग दोस मेजर टूर्नामेंट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया and all those moments I missed I think

0: that we all went through. Now it's we are in a great shape and we just want to continue that.
1: यहाँ भी क्वार्टर फाइनल में चुनौती कड़ी थी. सामने चीन की मजबूत जोड़ी थी जिसका एक हिस्सा थी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी चांग शू शियान और दूसरी थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली जिया यी फान. और शुरुआत भी ऐसी हुई, जब तक ट्रीसा और गायत्री अपने रंग में आती तब तक स्कोर 9-2 का हो चुका था. लेकिन फिर भारतीय जोड़ी ने 6 पॉइंट लगातार लिए. इसके बावजूद वो पहला सेट 21-16 से हारी. गायत्री बताती हैं,
2: फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने. स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया. वी डोंट वांट टू बी टू मच ऑफ द स्ट्रेटजी बट वी वर जस्ट रोटेटिंग. वी जस्ट वांटेड आवर लेग्स टू मूव.
1: पर कोर्ट साइड पर बैठे मेंटोर और गायत्री के पिता पुलेला गोपीचंद और कोच बी सुमित रेड्डी ने सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया, स्टे काम.
0: ही ऑलवेज सेड लाइक जस्ट काम डाउन एंड जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. आई थिंक दैट रियली वर्क्ड टुडे. दैट्स द काइंड ऑफ एडवाइस ही गिव बिहाइंड अस.
1: दूसरे सेट में कांटे की टक्कर हुई. स्कोर 15-14 तक पहुंचा और उसके बाद गायत्री और ट्रीसा ने मानो टॉप गियर डाला. 6 पॉइंट लगातार जीतते हुए 21-15 से वो सेट अपने नाम कर लिया.
0: द क्राउड वाज सो अमेजिंग. द क्राउड दैट गिव अस दैट कॉन्फिडेंस इवन वी लॉस्ट द फर्स्ट गेम आल्सो दे वर इन फुल जोश दैट कम ऑन गर्ल्स यू कैन डू दिस. आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस.
1: तीसरे सेट में चीनी जोड़ी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की. भारतीय जोड़ी 1-4 से पीछे थी और फिर 8 पॉइंट लगातार ट्रीसा और गायत्री ने लिए और अंततः इस मुकाबले को 21-13 से जीता. इस जीत पर कोच सुमित रेड्डी ने कहा,
3: मैच आज का तो बहुत अच्छा गया है. जैसा लड़कियां ने खेला हम तो बहुत ही खुश है एंड उसके साथ मेडल आ गया. आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. दोनों बहुत ही बेहतर खेले. जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग खेले, इतने हजारे लोगों के बीच में खेलना मजाक की बात नहीं है. तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस ले खेले.
1: इस जीत के बाद सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो गया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल आना सुनिश्चित है. लेकिन उससे मन कहाँ भरने वाला है तो सबके मन में एक ही सवाल है.
4: बोल आएगा
3: वो कल देखेंगे. कल का हम अभी ओपोनेंट्स का भी मैच देखना है. देख के हम ऑब्वियसली बोलेंगे हमारा प्लेयर्स को कि मोस्टली ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं. एंड आई थिंक गोपी सर ऑलरेडी मैच से पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो गोपी सर के साथ एक बार डिस्कस करने के बाद आई थिंक उसके हिसाब से सर प्लान करके बोलेंगे.
1: सेमीफाइनल में सामने होने वाली है पहली वरीयता प्राप्त चीन से ही आने वाली ल्यू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी, जिससे पहले भी ट्रीसा और गायत्री 6 बार हार चुके हैं. लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतना अब इस जोड़ी की फितरत है और इसीलिए शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल का हमें बेसब्री से इंतजार है. शाम होते होते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा क्योंकि अब बारी थी बीते वर्षों में 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पदक लाने वाली सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की. ये जोड़ी भी पिछले कुछ महीनों में चोट से जूझती आई है. वही सात्विक की लंबे समय से तंग करने वाली कंधे की चोट.
5: Yeah, just managing myself. So sometimes I feel very good in the one tournament. The next day I feel very tight. The next day I feel very worst. The next day I feel like 100%. So it's kind of complicated with my shoulder. But I just need to manage myself and play.
1: हालांकि क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को सामने कई मौकों पर भारत के लिए सिरदर्द बनी चीन की लियांग और वांग की जोड़ी थी. थॉमस कप, मलेशियन ओपन, चाइना मास्टर्स, हर बार ये प्रतिद्वंद्वी भारतीय जोड़ी के आड़े आए हैं. लेकिन गड़गड़ाती तालियों के बीच और भारतीय फैंस की हौसला अफजाई के समक्ष रांकी रेड्डी और शेट्टी ने एक अच्छी शुरुआत की. पहले गेम में 18-16 से लीड भी बना ली थी लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा कि धीरे धीरे दर्शक दीर्घा से आने वाली आवाज कम होती गई और अंत में एक हताशा भरी चुप्पी में तब्दील हो गई. 18-16 से पिछड़ने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने 5 पॉइंट लगातार लेकर पहला गेम जीता और दूसरे गेम को तो एक तरफा ही बना डाला. 21-9 से जीत हासिल की और महज 36 मिनट में इस मुकाबले को 2 सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया.
5: They were quite good in the first 4 shots. Whoever controlled the first 4 shots in the first set, we are controlling it. They got confident after 1 or 2 points. So if it is rally game, it's anybody's game. It's 50-50 because both have the attack. The Chinese can attack as well. We can attack as well. But the difference.